0: BBC World Service, in association with ABC and Akash Vani. This is Stumped.
1: Hello and welcome to Stumped, your intercontinental hit of news, features and debate from the quirky world of cricket. I'm Alison Mitchell in London, where we are going through yet another heatwave this summer, but the sport has been hotting up. We had the climax of the Women's T20 World Cup, that set against the Men's Football World Cup, football mania here, and Wimbledon mania as well. It is all happening at the height of the British summer.
2: Brett Sprigg in Sydney, nice to see you, Ali, filling in for Jim Maxwell, get well soon.
3: Jim, in the depths of our winter, कि उत्तर प्रदेश के असी घाट आप जा सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं। तो असी नदी के किनारे ही, असी घाट के पास ही आप संकट मोचन हनुमान मंदिर देखने भी जा सकते हैं। इस मंदिर को साल 1900 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित है। वाराणसी हमेशा से संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है और इस पवित्र शहर का एक ये अनिवार्य हिस्सा है ये संकटमोचन मंदिर। और इसके बाद जब शाम हो जाए तो आप चाहें तो आप दशाश्वमेघ घाट पर जा सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में सूर्यास्त होते ही मानो पूरी वाराणसी अपना रुख दशाश्वमेघ घाट की ओर कर लेती है। ये घाट प्रमुख गंगा घाट है और यहाँ पर शाम की आरती देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लगभग 45 मिनट तक चलने वाली ये आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपको बस यही रह जाने का मन करेगा। गंगा घाट की आरती के बाद आप घाट से होते हुए सैकड़ों छोटे छोटे मंदिरों को देख सकते हैं और यहाँ की दिव्य शांति को
1: By becoming the youngest man to play for India. He was just 15 years and 99 days old when he took the field in India's second T20 of their ongoing series against England. It breaks the long-held record of the great Sachin Tendulkar, who made his debut in a test match against Pakistan at the age of just 16 years and 205 days back in 1989. Now, Sunil, a lot of fans have been waiting for Suryavanshi to make his debut for the senior team. And after the Ireland defeats and a record run of losses, there's been a lot of consternation, I know, about the state of the T20 team overall. But what have you made about the hype around him in particular?
4: He is...

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टी फंक्शन रडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS Mahendragiri एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द Mahendragiri माउंटेन
2: Mahendragiri पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader.

0: வருமா?
1: மகளே இங்க வருமா?
0: லீலா பக்கத்துல டாக்டர் இருந்தா போய் கூட்டியா சொல்லுமா?
2: வேண்டாம் அண்ணா, வேண்டாம். இன்னைக்கு யாராலையுமே என்ன காப்பாத்த முடியாது. கதை முடிய போகுதுண்ணா, முடிய போகுது.
0: உன்னை தூக்கி வளர்த்த என் கையாலேயே உன்னை பலி கொடுத்துட்டேன்.
3: आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
4: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
3: डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी वीणा वादन की शिक्षा अपनी माता जी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
4: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, अ वेल नोन वीणा गुरु, एंड इवन गेव हर फर्स्ट प्रेजेंटेशन एट द एज ऑफ 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
3: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
4: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Edukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam.
3: Dr. R. Madhuri Devi, aaj ke karyakram ka aarambh Nata Raga mein Muttaya Bhagavatar ki rachna Shakti Ganapatim se kar rahi hain, jo ki

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Rithigaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जियार स्वामी की रचना जानकी रमणा।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present a composition of Vanamaliya G.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: था धन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 386।